Oh.

Les Deux.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कभी स्वप्न में भी सोचा था कि ड्रामा में मुझे आत्मा का ऐसा भी भाग्य नोदा हुआ है, और आत्मा का परमात्मा से मिलने का। बाप भी हर एक बच्चे के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। वाह भाग्यवान बच्चे,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सेंटर तो सब सेफ है,
2: सब ठीक है, ब्राह्मण परिवार भी ठीक है।
1: फिर भी बॉम्बे बाप का है, बाप का परिवार है, लेकिन जो बाप ने कहा फुल स्टॉप और तपस्या, इसको जरूर बनाना है। ये तो कुछ भी नहीं है, घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे, खिड़की नहीं खोल सकेंगे तो क्या करेंगे।
2: गुलाबा सेंटर में तो बाहर नहीं निकलते हैं अभी, वहाँ हमारी बहनें भी जो है वो बाहर नहीं निकलती।
1: ये इससे बहुत कुछ होना है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

छोटे और ही

api. Sikan me. Jangan.

अपा संसार दूसरा न कोई, इससे एकाग्र स्मृति

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जो भी, जितने भी आपके सेवा साथी हैं, उन्हों को देखने से अनुभव सुनने का अनुभव होता है, योग का अनुभव होता है, लेकिन वायुमंडल का भी अनुभव हो, ये अटेंशन निमित्त बने हुई आत्माओं को रखना उनकी विशेष सेवा है। स्वयं अगर योग युक्त पर वायुमंडल में ठीक स्थिति में रहती है तो उनका प्रभाव सेवा स्थान पर ऑटोमेटिकली पड़ता है। जैसे बाप दादा वह बड़े निमित आत्माए का वायुमंडल वाइब्रेशन पड़ता है ना, बाप दादा का वायुमंडल बदलता है तो हर बच्चे को वायुमंडल बनाने का, क्यों कि अभी अपने सेंटर्स का वायुमंडल बदलेंगे तब संसार का वायुमंडल बदलेगा। निमित्त आपके स्थान सेवा स्थान पुरुषार्थ है, लक्ष्य है, लेकिन इस लक्ष्य को

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Jack।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अभी से आपके चेहरे पर फियरत की समापति और सदा स्मृति स्वरूप की झलक चेहरे और चलन में आनी चाहिए। ये माया के जो शब्द है ना, बाप दादा खुश है, भाषण बहुत अच्छे कर रही है, लेकिन दिन प्रतिदिन अभी जैसे शरों द्वारा वाणी द्वारा सेवा का उमंग अच्छा रखा और सफलता भी पाई, ऐसे ही

0: Especial de Siva. Ceri. Orcelazioni. Uscabias. Jesse Pajero Cabias. Karti Karti. Ushar ho gayi hota aise abhi chere aur chalan se किसी को खुशी का वरदान दो, ये अभ्यास करो क्योंकि समय कम मिलेगा।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Вопрапто не їх, а сам.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Bunny.

Kurz.

Let's

0: Shake Bali on Sabata Pie Lincoln Matsa Shakti
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

जब

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बर्तन काम में तब आएगा जब रोज अमृत वेले। इस वरदान को रिवाइज करेंगे, गिफ्ट को रिवाइज करेंगे, तो बाप दादा यही गिफ्ट दे रहे हैं, एक कदम हिम्मत का कभी नहीं छोड़ना। तो बाप दादा हजार कदम

ऐसे नहीं देखना, देख के बाबा मदद करता है या नहीं, इम्तिहान नहीं लेना। बंधा हुआ है बाप, आप भी बंधे हुए हो, बाप भी बंधा हुआ है। तो इस गिफ्ट को रोज़

0: गिफ्ट ले, गिफ्ट दे। अच्छा,
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने पहले भी सुना है, संस्कार तो जो बाप के संस्कार है वो ही संस्कार है। उस समय सोचो ऐसे बनना है तो मेरे संस्कार नहीं, जो बाप के संस्कार वो मेरे संस्कार। बाप के संस्कार क्या है? Wow.

उसमें पाप के संस्कार सामने लाओ। लक्ष्य है पाप समान बनने का।

मिक्स हो जाते हैं ना, अच्छे कुछ अच्छे पाप के कुछ वो मेरे पास्ट के संस्कार। इसीलिए दोनों मिक्स रहते हैं।

और संस्कार बनते कैसे हैं वो तो सभी जानते हैं ना। संस्कार मन और बुद्धि के संकल्प और कार्य से संस्कार बनते हैं। पहले मन संकल्प करता, बुद्धि सहयोग देती,

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जाती

अगर दूर से नहीं भगाते तो माया की भी आदत पड़ जाती है, क्योंकि वो जान जाती है कि यहां

Jacoby, che saluto.

Să da cu lapte grecete. Chiraua. Morcea.

Nossa!

चेक करो कितना समय बीत गया। अभी समय की समीपता

esses, Mackie.

0: आवश्यक है।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: श्रेष्ठ रंग है

室。

Yoga.

Olimpan Jatuh.

Nyasi, Nyadi, Bermat Maki Piyadi. Tuna Syaretena.

0: मुझे नहीं जानते।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जो निमित्त है

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा ने देखा, पहले भी कहा है, योग सब लगाते हो, लेकिन अब आवश्यक
3: Спасибо.

0: परिवर्तन किया। समय अनुसार
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने पहले भी कहा है कि जब बाप दादा बच्चों को मेहनत करते हुए देखते हैं, युद्ध करते हुए देखते हैं, तो बच्चों की मेहनत करना बाप को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए इस 9 वर्ष को कैसे मनाएंगे? मुक्ति वर्ष मनाया, फेस्ट को समाप्त किया, तो ये वर्ष ऑटोमेटिक मेहनत मुक्त वर्ष हो जाएगा। सब मौज में रहने वाले, मेहनत करने वाले नहीं। मौज अच्छी लगती है या मेहनत अच्छी लगती है? मौज अच्छी लगती है ना, तो ये वर्ष मन में संकल्प में भी मेहनत मुक्त हो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जय विदेश जी, जय भारतवंश है तो दोनों ही भाग्य विधाता के बच्चे, इसलिए हर ब्राह्मण बच्चा विजयी है। सिर्फ हिम्मत को इमर्ज करो, हिम्मत समय हुई, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान होना पांडव है।
2: निश्चय होगा तो नशा जरूर होगा, निश्चय

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सेवा तो करते हैं, लेकिन सेवा में साथ साथ अपने में और साथियों में संतुष्टता योग सेवा का फल है। संतुष्टता व खुशी तो चेक करो, सेवा तो की लेकिन पहले भी सुनाया कि सेवा की खुशी तब होती है जब स्वयं साथी और वायुमंडल जन सपे संतुष्टता के वाइब्रेशन में सेवा की सफलता के तीन बातें विशेष सुनाई थी, याद होंगे। पहला नंबर सेवा अर्थात निमित्त भाव, दूसरा निर्माण भावना, तीसरा निर्मल वाणी। भाव भावना और स्वभाव ये सभी साथ साथ सेवा में है तो स्वयं भी संतुष्ट और साथी भी संतुष्ट और जिनों की सेवा की वो भी आगे बढ़ते जाए। निमित्त भाव वाले भाव के तरफ संबंध जोड़ेंगे। अगर निमित्त भाव नहीं तो भाव के नजदीक इतने नहीं आएंगे। तो जब भी सेवा करते हो तो ये चेक

0: चाहे कहाँ भी सेवा के लिए जाते हो तो ये चेक करो कि साथी संतुष्ट रहे, क्योंकि सेवा की सफलता है संतुष्टता का फल प्राप्त हो, खुशी प्राप्त हो।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
2: जुदा न थे न जुदा रहेंगे, विदा न होंगे न विदा कहेंगे, धरती गगन हो मधुबन वतन हो, बाबा दादी संग सदा रहेंगे, बाबा दादी संग सदा रहेंगे। याद में बाबा के सदा मगन, ओ दादी आपका यही कथन, ओ दादी आपका यही कथन।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: जिसको भी जो देखे ना, ऐसे लगे ये कौन मेरे सामने आ गए। देख देख के खुश होता नहीं।
3: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: इस वर्ष की ये लास्ट मीटिंग है, लेकिन दूसरे

कार्य करने। एक तो अपने सेवा स्थान को सत्य

विशेष कमजोरी हो। आप तो जानते हो ना अपने कमजोरी को। वो कमजोरी

say. Fiera Sangalabo. Say Crodo. Chota chota Crodo. जैसे हाथ उठाने में एवा रेडी हो गए ना, ऐसे Yeah.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सब्जेक्ट में बहुत कम पास ऐसी समझती है, शायद क्रोध कोई विकार नहीं है, ये शस्त्र है, विकार नहीं है। लेकिन क्रोध स्वरूप

सकती थे, लेकिन अंदर में जैसे बाहर क्रोध होता है तो अगर रूप है ना, क्रोध चलता रहता है अंदर खुद भी और दूसरे को भी चलाता है। ऐसे ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ये जिसमें अंतर है वो अंतर इस अग्नि में चलता रहता है। बाहर से लाल पीला नहीं होता, लेकिन अंतर लाल पीला फिर भी

0: रूपी है वो चतुराई का रूप है, क्रोध के चतुराई का रूप है। वो क्या है कहने में समझने में ऐसी समझती है वह कहती है कि कहां कहां सीरियस होना ही पड़ता है, कहां कहां ला उठाना ही पड़ता है कल्याण के लिए। अभी कल्याण है या नहीं वो अपने से पूछो। बाप दादा ने अपने हाथ में ला उठाने की चोटी नहीं दी है। ला उठाने की चोटी है दी है कोई मुरली में कहा है क्या? ला भले उठाओ क्रोध नहीं करो, वाले अंदर का रूप वही क्रोध का अंश होता है। हाँ, जो निमित्त आत्मा ही है उनको भी उठाना नहीं पड़ता है, लेकिन ला रिवाइज कराना पड़ता है। ला उठाते नहीं, कोई भी नहीं उठा सकता, लेकिन निमित्त है तो ला बाप द्वारा बनाए हुए ला को रिवाइज करना पड़ता है। इतनी छुट्टी है निमित्त बनने वालों को, सबको नहीं।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज बाप दादा और पत्नी चारों ओर के बच्चों को देख हर्ष

Love me.

हो सकता होगा जो एक दिन में

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

स्पष्ट करना। कई बच्चे कहते हैं संतुष्ट रहना तो सहज है, लेकिन संतुष्ट

Tschüss.

としたか。パルパオ。Custo partena. Fiera de sangue, lavto cielo.

Nossa.

0: कल्याण की व्रत। शुभ भावना, शुभ कामना।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

ಸಂತುಷ್ಟ ಮಾಡಿನ. ಸ್ವಯಂ ಕೋಪಿ ಭೇಟಿಯ

Tiens.

శక్తి. Shit.

संतुष्टा।

钱。परेशान नहीं होता।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: ब्रह्मा बाप को देखा, कर्म करते कर्म के बंधन से न्यारे, जीवन में होते कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सेवाओं के और मंग उत्साह की मुबारक तो थी, बहुत अच्छा कर रही है, करते रहेंगे, लेकिन हर समय हर दिन आप वर्ल्ड सर्वन, आपको याद है ब्रह्मा बाप साइन क्या करते थे, वर्ल्ड सर्वन, सर्वंट है तो सिर्फ शिवरात्रि की सेवा से वर्ल्ड की सेवा समाप्त नहीं होगी। लक्ष्य रखो कि मैं वर्ल्ड सर्वंट, वर्ल्ड की सेवा हर श्वास में, हर सेकंड में करनी है, जो भी आवे, जिससे भी संपर्क हो उसको
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: तो आज से सारे दिन में बार बार कंसीडर

0: recipe. Ek minit nikal. Is abhyas ko pakka kar dijiye.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

Hitler now. Come by.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: धरनी पर बैठना ये तपस्या की निशानी। तंदुरुस्ती की निशानी
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: अच्छा है, तो अच्छा है यहाँ है क्या? वाह पहुंच उतरा, हाय मेरा पार्टी है सर, हाय मेरे को व्याधि छोड़ती नहीं है, आप छोड़ो या व्याधि छोड़े। ऐसे होता है ना, किसकी महिमा करते हो तो वाह वाह करते हैं, तो व्याधि को भी वाह वाह कहो। हाय ये मेरे पास ही क्यों आई, मेरा ही हिसाब है प्राप्ति के आगे हिसाब तो कुछ भी नहीं है। सामने रखो और हिसाब किताब सामने रखो तो वो क्या है, क्या लगेगा? बहुत छोटी सी चीज लगे, मतलब तो ब्राह्मण जीवन में कुछ भी हो जाए तो रूप में देखो, नेगेटिव से पॉजिटिव करना तो आता है ना, कोर्स भी तो कराते हो ना, नेगेटिव पॉजिटिव का कोर्स कराते हो, तो उस समय अपने आप को कोर्स कराओ तो मुश्किल सहज हो जाए। मुश्किल डिक्शनरी में, ब्रह्मरों की डिक्शनरी में शब्द नहीं होना चाहिए। अच्छा कोई भी हिसाब है, आत्मा से है प्रकृति से है या शरीर से है, यो प्रकृति भी कई बार मुश्किल अनुभव कराती है। ये पांच तत्व कोई भी हिसाब किताब शोक अग्नि में पसंद कर।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: समाना पड़े, किनारा करना पड़े। सिर्फ भेजो। प्रतिज्ञा करने की फाइल लिखत वाले बाप दादा के पास बहुत फाइल पड़ी है वतन में। प्रतिज्ञा नहीं, दृढ़ता का संकल्प के रूप में ये दो बातें धारण करनी है, ठीक है टीचर्स? करनी है ना? अच्छा, और माताएं हाथ उठाओ, करेंगी करेंगी, पर हाथ उठाओ। अच्छा, उठा तो रही है। अच्छा पांडव उठाओ, पांडव भी उठा रहे हैं। देखता रहेगा, बाप दादा को देखने में देरी नहीं लगती। ठीक है ना? अच्छा,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा सभी बच्चों को कहते हैं कि आप सभी आप और बाप कंबाइंड है, तो कंबाइंड है तो सिंगल हुए क्या? लोग के जीवन अलग चीज है, लेकिन ब्राह्मण जीवन में कंबाइंड रूप में ऐसे कंबाइंड हो जो कोई भी अलग कर नहीं सकता। ऐसे कंबाइंड हो ना, कंबाइंड हो ना कि अकेले हो, कंबाइंड सदा बाप हर कार्य में सहयोगी है, साथी है। ये नशा रहता है ना, कभी अपने को अकेले तो नहीं समझते, नहीं ना समझते है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कई बच्चे समझते हैं बाप दादा से तो संबंध है, परिवार में हुआ नहीं हुआ क्या बात है, बीच से तो है, विश्व का राज करना है ना, और राज में उस संबंध में आना ही होगा, इसलिए संबंध संपर्क में नहीं मिलती, अगर दुआएं नहीं मिलती, फीलिंग नहीं आती, तो समझो संबंध संपर्क में कोई कमी है। संपर्क है तो दुआओं की अनुभूति होनी चाहिए, और दुआओं की अनुभूति क्या होगी, अनुभवी तो होना, अगर सेवा से मिलती है तो स्वयं भी हल्का रहेगा, और जिसके संपर्क में आए बाजा ठीक नहीं चलाना तो है ना, संबंध में आओ न ऐसी कहावत है, ज्यादा मीठे पार चींटियां बहुत आती, इतना इसी भी नहीं। लेकिन डबल लाइट रहेगा।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाबा एजुकेशन का छपा है और यूथ का छपा है,
2: यूथ
1: और एजुकेशन,
2: चलो
1: सभी का भी छप रहा है कहते हैं, मिला जुला
2: छपना चाहिए क्योंकि कोई भी आते हैं तो लाइब्रेरी में ऐसे ऐसे किताब होने चाहिए जो कोई भी और हर वर्ग का पढ़ने से प्रभाव पड़ता है, कई समझते हैं कि कर्म करते हुए ड्यूटी संभालते हुए कुछ हो नहीं सकता है, तो लोगों को उमंग उत्साह आवे, तो जब ये बने हैं तो हम भी बन सकते, ऐसा किताब निकालो और अपने जो भी सेंटर्स हैं वहाँ सब जगह में जहाँ लाइब्रेरी हो वहाँ।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: खुशी में नाचते भी रहता और दिल खुश मिठाई बांटते भी रहना, साथ में जो भी सम्मान संपर्क में आए उसको कोई न कोई गिफ्ट देना, कोई हाथ खाली नहीं जाए। कौन सी गिफ्ट देंगे? आपके पास गिफ्ट तो बहुत है, गिफ्ट स्टॉक है। तो देने में कंजूस नहीं बनना, देते जान फ्राक दिल बनना, किसी को शक्ति का सहयोग दो, शक्ति का वाइब्रेशन दो, किसको कोई कौन का गिफ्ट दो, मुख से नहीं अपने चेहरे और चलन से। और किसको चलो कोई गुण इमर्ज नहीं भी हो, शक्ति इमर्ज नहीं भी हो, तो कम से कम छोटी सी सौगात भी देना। वो कौन सी शुभ भावना और शुभ कामना है? शुभ कामना करो कि ये मेरा सोचेंगे तो अशुभ भावना से शुभ भावना बन जाए। इस भाई बहन का भी मूर्ति कला का पाठ हो जाए, इसके लिए सहयोग व शुभ भावना। कई बच्चे कहते हैं कि हम देते हैं वो लेते नहीं। अच्छा, शुभ भावना नहीं लेते हैं, कुछ तो देते हैं ना, चाहे अशुभ बोल आपको देते हैं। अशुभ वाइब्रेशन देते हैं, भविष्य

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा सभी बच्चों को बहुत सहज पोषारद की विधि सुना रहे। माताओं को सहज चाहिए ना बाप दादा, यही सब माताओं को बच्चों को कहते हैं। सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन है सिर्फ चलते फिरते संबंध संपर्क में आते हर एक आत्मा को दिल से शुभ भावना की दुआएं तो और दूसरों से भी दुआएं लो, चाहे आपको कोई कुछ भी दे, बद दुआ भी दे, लेकिन आप उस बद दुआ को भी अपने शुभ

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जैसे ब्रह्मा

सामने जाते रहे।

Yeah.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Suck.

संस्कार के स्वरूप में देखो। चाहे कैसे भी संस्कार वाली आत्मा है, लेकिन आपकी हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना परिवर्तन की श्रेष्ठ भावना उनके संस्कार को थोड़ी समय के लिए परिवर्तन कर सकते। सेवा के विस्तार में सेवा के विस्तार के समान संपर्क में आना मर्ज हो गए, खत्म नहीं हुआ है लेकिन मर्ज हो गए। आत्मक स्व

स्वरूप से समान संपर्क में हो, हर समय चेक करो मुझे देवात्मा ब्रह्मा आत्मा का श्रेष्ठ कर्तव्य श्रेष्ठ सेवा है। सेवा कैसे भी आता

0: सबसे सहज पोषण होते हैं। सारा दिन दृष्टि वृत्ति बोल भावना सबसे दुआएं तो दुआएं लो।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सीचे

अभी ये ड्रिल सभी शुरू करो। परम धाम से देवता बीच में

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी क्या याद रखा, कौन सी बात को अंडरलाइन किया, बेहद का फेरा, आत्माओं को इच्छाओं से बचाओ, सभी पाप के साथ ऊंचे थे ऊंचे परम धाम में बैठ, पाप के साथ ये सर्व आत्माओं को वाइब्रेशन फैलाओ, फैला सकते हैं ना, तो बस अभी परम धाम में पाप के साथ बैठ जाओ, वहां से वायुमंडल

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Jesse.

appreciate it.

टीचर के रूप में अभी भी काम कर लेता है। जैसे दे अपमान की नजर

Awesome.

क्यों नहीं कर

पुराना देवान का संस्कार रावत तो नहीं है और वो खत्म होगा बेहद के वैराग्यवृत्ति से। सर्वस्व

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा, ये

से दूर नहीं हूं। सभी

दृढ़ संकल्प करना कि एक भी मेरे से भारी नहीं हो सवाल के, संस्कार नहीं मिलते हैं तो भारी होते, तो बाप समझते।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप शिवा के बिना रहता है, याद के बिना भी नहीं रहता। जितना बाप याद में रहता उतना आप मेहनत से रहते हैं, लेकिन मेहनत से, अटेंशन से। और बाप के लिए है या परम आत्मा के लिए है, आत्मा है, नंबर वन आत्मा है, तो है स्वयं बच्चों के याद के बाप रह ही नहीं सकता।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अब छोटी छोटी बातों में टाइम नहीं लगा, जैसे देखो मक्खी आती है, मच्छर आते हैं, ठहरने देते हो, फौरन उड़ा देते कि बैठने देंगे। अच्छा मच्छर पले आओ, कोई भी समस्या क्या है, मच्छर और मक्खी तो है, फौरन भगाओ, उनों का काम है आना, माया आने का काम नहीं छोड़ती, लेकिन ब्राह्मण भगाने के काम में कभी कभी थोड़ी देरी लगा देते, माया भी सुन रही है। तो ये करेंगी ना, लेकिन आप तो माया

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जुदा न थे न जुदा रहेंगे, विदा न होंगे न विदा कहेंगे। धरती गगन हो, मधुबन वतन हो, बाबा दादी संग सदा रहेंगे, बाबा दादी संग सदा रहेंगे। याद में बाबा के सदा मगन, ओ दादी आपका यही कथन, ओ दादी आपका यही कथन।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कि वर्तमान समय आप बच्चों की विश्व को ये सेवा की आवश्यकता है, जो चेहरी से नैनों से दो शब्द से हर आत्मा की दुख को दूर कर खुशी दे दो। आपको देखते ही खुश हो इसलिए खुश ने माँ जेरी या खुश ने माँ मोरत सदा रहे, क्योंकि मन की खुशी सूरत से स्पष्ट दिखाई देती। कितना भी कोई खुशी में रहना असंभव भी समझते हैं, लेकिन आपके सामने आते हैं

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अच्छा विज्ञान, बहुत अच्छा अनुभव है। जैसे साइंस महीना होती जाती है, साइंस महीन होती जाती। ऐसे आप साइलेंस और साइंस दोनों के अनुभवी हो, तो अपने हम जिन्स को साइलेंस का महत्व सुनाओ, उनका भी कल्याण करो। कल्याण करना नुकसान का नाम निशान है। ऐसे जो बड़े बड़े विज्ञानी है, उनको ज्ञान दो साइलेंस का, तो फिर अपने नई दुनिया में रिफाइन विज्ञान के कार्य करने में मददगार बनेंगे। तैयार करो इंजीनियर्स को, चलो पूरा ज्ञान नहीं लेवे लेकिन रेगुलर नहीं बनेंगे, लेकिन बाप को तो पहचाने। कई ऐसी आत्माएं हैं जो रेगुलर नहीं बनती है, लेकिन निश्चय और खुशी में रहती, संबंध में सहयोगी रहती। ऐसी आत्माएं भी तैयार करो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

परिवर्तन का कार्य। नहीं करना है बच्चों के साथ साथ करना, ये अलौकिक साथ रहने का प्यार। साथी बनने का प्यार, इस संगम बड़ी अनुभव करते बाप और बच्चों का इतना गहरा प्यार। जन्म भी साथ है, रहते भी कहाँ हो अकेले या साथ में, हर एक बच्चा उमंग उत्साह से कहते हैं कंबाइंड रहते हो ना, अकेले तो नहीं रहते हो ना। सात जन्म है, सात रहते और आगे भी क्या वेदर।

0: और पाप बच्चों का देकर कोई भी बच्चा हो कहाँ भी है कैसा भी है, लेकिन साथ है और साथ ही चलने वाले।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: संकल्प करते हो लेकिन बाद में क्या होता है? संकल्प क्यों कमजोर हो जाती है जब चाहते भी हो? क्योंकि बाप से प्यार बहुत है। बाप भी जानते हैं कि बाप दादा से सभी बच्चों का दिल से प्यार है, और प्यार में सभी हाथ उठाते हैं कि 100% तो क्या, लेकिन 100% से भी ज्यादा है। और बाप भी मानते हैं प्यार में सब पास है, लेकिन क्या है, लेकिन है कि नहीं है? लेकिन आते हैं बीच में लेकिन आ जाते हैं, आ जाते हैं। ना नहीं करते हैं तो हाँ है। बाप दादा ने एक बात नोट की है, मेजॉरिटी प्रतिज्ञा कमजोर होने का एक ही कारण है, एक ही शब्द है। सोचो वो एक शब्द क्या है? टीचर्स, एक शब्द क्या है? बोलो टीचर्स, क्या है? पांडव बोलो, क्या है? एक शब्द है, आ गया, याद तो आ गया ना? आ गया, याद आ गया। अच्छा, एक शब्द है अपमान के रूप में भी मैं आते हैं, और कमजोर करने में भी मैं आते हैं। मैंने जो कहा, मैंने जो किया, मैंने जो समझा वो ही राइट है, होना चाहिए। और जब होता नहीं है ये अपमान, अपमान कम है। मैं जब पूरा नहीं होता है तो फिर दिल शिकस्त में भी आता है। मैं कर नहीं सकता, चल नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। एक बॉडी कॉन्शियसनेस काम में बदल जाए, मैं स्वमान भी याद दिलाते हैं, और मैं कष्ट भी करता है, और मैं दिल खुश भी करता है। प्लीज, जानते हो क्या होती है? कभी भी किसी में भी अगर बॉडी कॉन्शियस का अपमान अंश मात्र भी है, उसकी निशानी क्या होगी? वो अपमान अपना सहन नहीं कर सकेगा। अपमान अपमान सहन नहीं करे। शराबी कोई कहेगा ना, ये ठीक नहीं है, थोड़ा निर्माण बन जाओ, तो अपमान लगेगा। ये अपमान की निशानी।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Yeah.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप सभी फलक से कहते हो, अगर कोई आप बच्चों से पूछे साथ

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जाती है ना, तो उसी स्थिति में रहते हुए ऑर्डर करते हो, तो मालिक ही नहीं है, ऑर्डर क्यों माने।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अच्छा टीचर साथ उठो, अच्छा टीचर सभी स्वयं भी सफल करो और सफल करो, सेवा में वृद्धि होना अर्थात खजानों को सफल किया और करें तो इस वर्ष इस स्लोगन को प्रैक्टिकल में लाना तो सुधई वृद्धि होती जाएगी। हिम्मत दिलाओ, बाप दादा ने देखा है कोई कोई स्थान
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: दिल में चंदा तो लहरा लिया और कपड़े का चंदा भी लहरा लिया जगह जगह पर। अभी पार्थक्यता का चंदा जल्दी से जल्दी लहराना ही है। यही फिर तलो दृढ़ प्रतिज्ञा का फिर तलो के जल्दी से जल्दी ये दुनिया को मुक्ति धाम में जीवन मुक्ति धाम में भेजो। बहुत दुखी है ना तो रहम करो। अब तो कसे चुराओ जो पाप का वर्षा है मुक्ति का वो सब परेशान बहुत है। आप शान में हो वो परेशान
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Sí.

开心。

0: परमधाम। साथ में अपने राज के।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सबसे पहला खजाना है ज्ञान का खजाना। जिस ज्ञान के खजाने से इस समय भी आप सभी मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे। जीवन में रहते, पुरानी दुनिया में रहते, तमोगुणी वायुमंडल में रहते, ज्ञान के खजाने के आधार से इन सब वायुमंडल वाइब्रेशन से न्याने मुक्तो कमल पुष्प समान न्याने मुक्त आत्माए दुख से चिंताओं से अशांति से मुक्त हो जीवन में रहते बुराइयों के बंधनों से मुक्त हो, व्यर्थ संकल्पों के तूफान से मुक्त हो, जीवन मुक्ति इस ज्ञान के खजाने का फल प्राप्ति। जय व्यर्थ संकल्प आने की कोशिश करती है, नेगेटिव भी आती है, लेकिन ज्ञान अर्थात समझ कि व्यर्थ संकल्प व नेगेटिव संकल्प का काम है आना, और आप ज्ञानी तो आत्माओं का काम है इनसे मुक्त न्यारी और बाप की प्यारी रहना। तो चेक करो ज्ञान का खजाना प्राप्त है, संपन्न है या कम है। अगर कम है उसको जमा करो, खाली नहीं रहे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: खुश रहो, कभी कभी कोई बच्चों का चेहरा बड़ा सोच विचार में थोड़ा ज्यादा गंभीर दिखाई देते हैं। खुश रहो, खुशी में नाचने की और अपने भाग्य और भगवान के गीत गाने की। तो नाचने गाने वाले जो होते हैं ना, वो अगर ऐसा गंभीर होके नाचे तो कहेंगे नाचना नहीं आता। गंभीरता अच्छा है, लेकिन टू मच गंभीरता थोड़ा सा सोच विचार कर।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

जो सच्ची दिल, साफ दिल, बड़ी दिल, तीन बातें याद रखो, सच्ची दिल, साफ दिल, बड़ी दिल, तीनों बातें अगर कोई भी समय दुनिया की हालतों में भी, दुनिया की हालत कैसी भी हो, लेकिन तीन ही बातें हैं तो आप सबको दाल रोटी बाप दिलाएगा। दो चार सब्जी नहीं दिलाएगा, दाल रोटी। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। अनुभव किया है ना, पुराने जो पहले पहले आए हैं उन्होंने अनुभव कर लिया, कभी भूखे रहे और ये जो गुड़ है ना उसको बोरन बीटा बना के बाप दादा हाथ से खिलाता था। और बाप दादा के हाथ से रोटी खाते हैं सबका पेट भर गए। बोरन बीटा बनाने आते हैं नहीं आते, कैसी भी हालत हो, ये गुड़ सब्जी नहीं हो, दाल नहीं हो, ये बोरन बीटा बहुत सुख देता है। बनाने सीख जाओ, सभी यहाँ सीख के जाना। बेटा बहुत काम में आएगा। लेकिन चार बातें याद करना, ऐसे नहीं एक भी बात कम होगी तो ढूंढना पड़ेगा, सहज नहीं मिलेगा। फिर मुबारक के बताने बजाओ।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: तो आज बाप दादा क्या चाहते हैं? ब्रह्मा बाप समान बनो, फॉलो फादर, क्योंकि समय चीक।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अभी बहुत टाइम हो गया है, कोई नया कार्य की इन्वेंशन नहीं निकाली। वर्गीकरण का भी कार्य अभी काफी टाइम चल चुका, कॉन्फ्रेंस भी चल चुकी, युद्ध यात्राएं भी चल गई। अभी कोई नई सेवा की विधि निकालो, सोचो जिससे आवाज सहज फैल जाए। अभी तक जो भी किए सेवा के प्लान बाप दादा को पसंद है और वृद्धि भी हुई है, लेकिन बहुत समय चल चुके ये प्रोग्राम्स। अभी कोई नई इन्वेंशन तैयार करो, कोई भी करे, छोटे करे तो इन्हें एडवांस मुबारक।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Πισίνακο. Yeah.

那一瞬间，I'm dead.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कोई कांटेक्ट मिलता और किसको रॉयल फैमिली मिलती, इसके भी कोई है रहस्य जो this

सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स

abbassarle. Ho troppe le scritte. Salsa. Yes.

Fremd die Meers.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Jesse.

Assiette.

Sunday.

Nesjet.

Harry Moffat. Tú no mereces. Lekin yo sané. Some.

0: a man kya kyun isme bahut chale jaate jo aaya wo jata bhi lekin jayenge kaise
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सभी जाती है, लेकिन माया के झूले में नहीं झूलना। अभी अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलो, खुशी के झूलों में झूलो, प्रेम के झूले में झूलो, अभी आनंद के झूले में झूलो, अभी ज्ञान के झूले में झूलो। कितने झूले हैं अनगिनत, झूले से उतरो नहीं।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कोई कोई बच्चे थोड़े ज्यादा गंभीर बनते हैं, गंभीरता अच्छी है, लेकिन ज्यादा गंभीरता सीरियस लगता है, तो सीरियस किसको अच्छा नहीं लगता। मुस्कुराता हुआ चेहरा सभी को पसंद आता है, और ऐसे ज्यादा गंभीर वाला चेहरा उसे डरती है, दूर भागती है, सहयोगी नहीं बनेंगे।

0: हंसो नहीं मुस्कुराओ, जोर से हंसना नहीं मुस्कुराना, क्योंकि बाप दादा को अभी दीवार पर शरद चाहिए।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जय स्व के परिवर्तन में जय सेवा के सफलता में जय हर आत्मा को शुभ भावना शुभ कामना द्वारा परिवर्तित करने में उमंग भी अच्छा उत्साह भी बहुत अच्छा साथ साथ हिम्मत भी यथा शक्ति है। बाप दादा ऐसे हिम्मत वाले बच्चों को एक संकल्प के पीछे पदम गुना मदद अवश्य देते हैं। इसलिए हिम्मत से सदा आगे बढ़ते चलो, कभी भी स्वप्रत व अन्य आत्माओं के प्रति हिम्मत को कम नहीं करना, क्योंकि ये नवयुग है। हिम्मत रखने से उड़ने का युग वरदान युग पुरुषोत्तम युग डायरेक्ट विधाता द्वारा सर्व शक्तियां वर्षे में सहज प्राप्त होने का युग। इसलिए इस युग के महत्व को सदा स्मृति में रख, कोई भी कार्य आरंभ करते हो चाहे स्वपुरुषार्थ चाहे विश्व सेवा, सदा हिम्मत और बाप दादा के मदद द्वारा निश्चय है कि स्वपुरुषार्थ में वह सेवा में सफलता हुई पड़ी है, होना ही है। असंभव संभव होना ही है, क्योंकि ये युग सफलता का फर्श में

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: हंसी की ये बात है तो सभी कहते हैं कि पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं और बाप दादा देख करके बाप को रहम भी आता है। पुरुषार्थ बहुत करते, कभी कभी मेहनत संस्कार ऐसे संस्कार के ऊपर ही कह के अपने को हल्का कर देते, लेकिन बाप ने आज देखा कि ये जो कहते हो आप कि मेरा संस्कार है, तो क्या आपका ये संस्कार है? संस्कार क्या है? और ओरिजिनल आपके संस्कार कौन से हैं? जिसको आज आप मेरा कहती हो वो मेरा है या रावण का है? किसका है? आपका है? कहते तो ऐसे ही हो ना कि मेरा संस्कार ऐसे कहते हो, तो आज से ये नहीं कहना मेरा संस्कार नहीं, यह हवा में किचरा आ गया और किया जाता है ना कभी, तो ये रावण की चीज आपके पास आ गई, उसको मेरा कैसे कहते हो? है मेरा है, है मेरा है, है नहीं है ना? तो अभी कभी नहीं कहना, जब मेरा शब्द बोलो तो याद करो मैं कौन और मेरा संस्कार। संस्कार आत्मा अभिमानी में ये संस्कार

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: नए नए बच्चे

हिम्मत रख।

giorni mi dai. Peace.

Show.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: देखो परिवर्तन तो होना है ना, तो प्रकृति भी अपना काम तो करेंगे ना। जब मनुष्य आत्माओं ने प्रकृति को तमोगुणी बना दिया तो वो अपना काम तो करेंगे ना, लेकिन हर खेल ड्रामा के खेल में ये भी खेल है। खेल को देखते हुए अपनी अवस्था नीचे ऊपर नहीं करना, परिस्थिति मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं की स्वस्थिति को प्रभाव नहीं डाल, और ये आत्माओं को मानसिक परेशानियों से चुराने के निमित्त बनो। योग मन की परेशानी आप मेडिटेशन से मिटा सकते। डॉक्टर्स अपना काम करेंगे, साइंस वाले अपना काम करेंगे, गवर्नमेंट अपना काम करेगी। आपका काम है मन की परेशानी टेंशन को जीवन का दान देना, सहयोग देना। जैसे आग लगती है तो आग बुझाने वाले डरते नहीं है, बुझाते। तो आप सब भी मन के परेशानी के आग बुझाने वाले। देखो प्रकृति को कोई मना नहीं कर सकता। गुजरात में आओ, अपो में नहीं आओ, बॉम्बे में नहीं आओ, नहीं, वो स्वतंत्र है। लेकिन सभी को अपने स्वस्थिति को अचल अडोल और अपने बुद्धि को मन के लाइन को क्लियर रखना। लाइन क्लियर होगी तो टचिंग होगी। बाप दादा ने पहले भी कहा था, ओनों की वायरलेस है आपकी वॉइसलेस बुद्धि। क्या करना है, क्या होना है, करते रहो, बाहर निकले, अंदर बैठे, दरवाजे पर बैठे, छत पर बैठे, नहीं, आपके पांव वहीं चलेंगे जहां सेफ्टी होगी। और अगर बहुत घबरा जाओ, घबराना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत घबरा जाओ, बहुत डर लगे, तो मधुबन असलम कर तो सब कुछ होना है, डरना नहीं, खेल है, बड़ी

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा को चारों ओर के बच्चों से अभी तक एक आश रही हुई है, पता है कौन सी आश है? वो जान तो गई हो, जान गए हो ना टीचर्स, जान गए हो ना। सभी बच्चे यथाशक्ति पुरुषार्थ तो कर रहे हो, बाप दादा पुरुषार्थ देख करके खुश कराते हैं। लेकिन एक आश ये पुरुषार्थ में अभी दीवार गति चाहिए, पुरुषार्थ है लेकिन अभी दीवार गति चाहिए। बाप द्वारा विश्व को मुक्ति का वर्षा दिला सकेंगे। तो मुक्त है, किसी भी प्रकार की समस्या का कारण नहीं आगे। ये कारण है।
2: Thank you.
1: समाप्त कर। हर एक समझे मुझे करना टीचर, समझे मुझे करना है स्टूडेंट, समझे मुझे करना है प्रवृत्ति वाले, समझे मुझे करना है मधुबन वाले, समझे हमें करना है। मैं मधुबन वाले है ना, करना है ना, ये हाँ नहीं करता, करना है। आज समस्या को समाप्त, शब्द को ही समाप्त हो जाए, कारण खत्म हो के निवारण आ जाए। अगर दिल से दृढ़ संकल्प करेंगे स्वरूप बनना ही है, कुछ भी हो सहन करना पड़े, सामना करना पड़े माया को। एक तो के समान संपर्क में सहन भी करना पड़े, मुझे समस्या नहीं।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Dios.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अब तो एवर रेडियो।

0: Tussametto atti renki, papta tarri santiki, sabine atto te, tussametto parpi, pefi kerpaccia. Pefi kerpi paccia.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: भक्त ने देखा कि कमजोरी देती तो लेकिन फिर वापस ले जाने देखो वो वापस नहीं आता। अकल वाला है ना वो। 5000 वर्ष के पहले वापस नहीं आएंगे। तो आप पुरानी चीजें वापस क्यों देते हो? जिसके देंगे सोचेंगे कि ये मुझे छोड़े या मैं छोड़ू, कौन छोड़ेगा कौन? अच्छा अगर फिर भी वो हवा में उड़ती हुई आपके पास आ जाए दोबारा फिर क्या? फिर रख देंगे ना, रखेंगे कि फेंक देंगे, फेंकेंगे। तो ये चीज क्यों नहीं फेंकते? अगर गलती से आ भी गई तो जब पसंद नहीं है और आपको वो चीज आपके पास फिर से आती है तो क्या आप गंदी चीज संभाल के रखेंगे? रखेंगे? कोई भी किसको गलती से भी अगर कोई खराब चीज दे देवे तो क्या करेंगे? अलमारी में सजा के रखेंगे? नहीं नहीं, नहीं। fioret. El patata que te va a pasar.
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: हाथ उठाने में तो हुशियार नहीं, बाप दादा खुश खुश हिम्मत तो रखी ना, तो हिम्मत थे बच्चे खुदा। जरूर मदद मिलेगी, सिर्फ इच्छा रखो बस। पढ़ना ही है, करना ही है, पुरुषार्थ ही नहीं, पुरुषार्थ बाप दादा खुश होते हैं। कोई कोई बच्चा अभी भी देखते हैं पुरुषार्थ में बातें आते, थोड़ा कमजोर बन जाते, लेकिन नहीं से कम जो रेगुलर आने वाले है, उन्हों को तीव्र पुरुषार्थ का लक्ष्य है। ऐसे नहीं है, नहीं की बातें सोचते हैं, लेकिन करने में थोड़े ढीले पड़ते।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: पत्थर में अपने को नहीं रखो, स्वतंत्र।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Yeah.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सजा

सात सो जाओ अकेले नहीं, अकेले सोते हो ना तभी सो बनाते। अगर बाप के साथ सो तो कभी ऐसे स्वप्न भी नहीं आ सकते, क्योंकि फरमान है या तो फरमान, अगर फरमान को नहीं मानते हो तो फरमान के बदले अरमान मिलता है। सुबह को उठ करके दिल में अरमान होता है ना, मेरी पवित्रता स्वप्न में कदम हो, ये कितना अरमान है। कारण जैसे आया वाया वहां की बातें करते करते सो जाओ, क्योंकि समाचार तो बहुत होते हैं ना, और दिलचस्प समाचार तो फिर होते हैं, तो कहीं कहते हैं और तो टाइम साथ में एक कमरे में जाते हैं तो लेन देन करते हैं। लेकिन काफी

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

Fucks.

0: mir wichtig, Bjarne, Sonne, Hell, Sonne, Hell, Gitterna, Tolle Nacker, Sonne, Ogesse.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: But sir.

assim.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: फॉलो कर।

क्या समझते हो? पहली लाइन तो लेना राइट है, राइट राइट है मधुबन वाले, थोड़ा थोड़ा ले लेना चाहिए, ले लेना चाहिए। पहली लाइन ले लेते हैं। ये फीलिंग

ईशान कौन होगा? जहां किचरा होगा वहीं परेशान होंगे ना। तो उस समय

Shh.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अच्छा, जो समझती है, दृढ़ संकल्प कर रही है। अच्छा, आप घड़ी घड़ी निकाल लेंगे ना तो निकल जाएंगी, रख नहीं दो अंदर, क्या करें कैसे करें, निकलता नहीं है, ये नहीं निकालना ही है। तो दृढ़ संकल्प करेंगे, अभी हाथ उठाओ जो करेगा, मन से हाथ उठाना, पैर से नहीं उठाना, मन से।
4: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: योग में अमृत वेले बैठते मेजॉरिटी ऐसे समय पर अभी ज्वालामुखी योग चाहिए। वो ज्वालामुखी योग अशांति हलचल बढ़ती है, इसलिए अपने अब एक रखी है, एक परिवार। उसके परमान जब एक परिवार है तो अशांत आत्माओं को कुछ तो चली देंगे।
2: अगले

0: mucho a la mojillo cantó a Raín. Yo vi Sanskar Rewe. Wo bhi pasamon.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सभी जो भी आए हैं, बाप दादा को एक एक बच्चा प्यारा, क्यों कैसा भी है

0: sé qué decir. Mira, mamá. Islie. Bab kabhi ati pyar. Sirf bab dada ek baat fir se yaad dila raha hai ki apna chehra sada khushnuma khushi mein chamakta rahe. Baat chali jaye lekin khushi nahi. संगम योग की खुशी परमात्म गिफ्ट है. तो होली अर्थात कोई ऐसी बातें आवे तो याद करना कि होली मना के आए. जो होली बात होली खुशी नहीं जे परमात्म सौगात खजाना खुशी. बाप दादा सदा कहते हैं ये स्लोगन सदा याद रहे. खुश रहना है और खुशी बांटनी. जितने बांटेंगे उतने बढ़ेंगे. और खुश नेमा चेहरा चलते फिरते ऑटोमेटिक सेवा करता रहेगा. जो भी देखेगा वो यही सोचेगा क्या मिला. तो आज होली की दिल खुश मिठाई है खुशी. सपने खाई सदा खाते रहना. इसमें कोई बीमारी नहीं होगी. अच्छा
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो. शांति की धुन रहे जीवन में सदा.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Thank you.

शरद का समय नहीं होगा, अभ्यास करें, लगाओ फुल स्टॉप और हो जाए आश्चर्य की बात रहा। समय अभी मिला हुआ है।

salta.

Щеретки та сидять.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा तो फिर भी हर बच्चे के ऊपर सदैव खुश रहते। जब मेरा बच्चा कह दिया तो जो भी हो जैसे भी हो बाप तो देख खुश होता ही। बाप ने जो वायदा किया है कैसे
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आप ब्रह्मात्माओं के ब्यूटी

person.

चमकते रहते हैं।

Chamak de güey.

Israeliti.

Jack.

0: सारे चक्कर में इतने श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार पवित्रता।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बिजनेस वाले हाथ उठाओ, ये सब बिजनेस बिजनेस वाले क्या सोचते हैं, खास आपको चांस मिला है। बिजनेस वालों को बाप से भी बिजनेस कराओ, श्रम खुद किया वो तो अच्छा किया, लेकिन औरों को भी बाप से बिजनेस कराओ, क्योंकि आजकल सर्व बिजनेस मैन टेंशन में बहुत है। बिजनेस समय अनुसार नीचे जा रहा है, इसलिए जितना भी पैसा है, पैसे के साथ चिंता है क्या होगा, तो उन्हों को चिंता से हटाए अपना शीख खजाने सुनाओ। जितने भी बिजनेसमैन आए हैं, चाहे छोटा बिजनेस है चाहे बड़ा है, लेकिन अपने हम एजेंट्स कार्य करने वालों को खुशी का रास्ता बताओ। जो भी आप बिजनेसमैन आए हैं, उन्हों को चिंता है क्या होगा कैसे होगा, है चिंता? हाँ नहीं है तो हाथ उठाओ। अच्छा नहीं है चिंता, कल कुछ हो जाए तो आपको बेफिक्र हो, बेफिक्र होके तोड़ने वाला भी बच जाएगा, और फिक्र में होके निर्णय ठीक नहीं होगा तो एक दिन में क्या से क्या बन जाते, ये तो जानते ही हो। बेफिक्र होंगे, निर्णय अच्छा होगा और बच जाए, टचिंग होगी। अभी समय अनुसार ये करे या नहीं करे, इसीलिए फिक्र मारना, बिजनेस भी करना और अपनी स्थिति भी करना। तो सदैव ये याद रखो, बेफिक्र बात जाए, फिक्र की बात भी बदल जाए। हिम्मत नहीं हारो, दिल शिकस्त कभी नहीं, हिम्मत से बाप की मदद मिलती रही। बाप मदद के लिए बंधा हुआ है, लेकिन ऐसे नहीं, हिम्मत ही के मददगार नहीं। आप सोचेंगे बाप की मदद तो मिली नहीं, लेकिन पहले ये सोचो हिम्मत है, हिम्मत बच्चे की मदद बाप की। आधा शब्द नहीं पकड़ो, बाप की मदद तो चाहिए ना, लेकिन हिम्मत रखी, दिल शिकस्त ना होकर हिम्मत रखते चलो तो मदद गुप्त मिलती रहेगी। तो बोलो कौन हो, बिजनेसमैन सभी बोलो कौन हो, कौन हो? बेफिक्र बच जाओ, हाँ बोलो, हाँ बेफिक्र बच जाओ, ये याद रखना।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अभी भी सच्चे दिल के सने में

Già del Cassanese.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

ऐसे नहीं, दूसरे प्यारे नहीं है, वो प्यारी है लेकिन मधुबन वालों से एक बात का विशेष प्यार। आते हैं वो ये वायुमंडल

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: sé que ama el té. Guarda.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

जैसे बिजली का कनेक्शन, अगर थोड़ा भी लोसो वाली को जाए तो लाइट ठीक नहीं आ सकती। Yes.

100% waste. तो उसको बचाओ, ऐसे नहीं समझो, थोड़ा सही तो वेस्ट जाता है, बाकी तो सारा दिन ठीक रहता है। But

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: रोम रोम में राम रमे थे, रामा नाम तुम्हारा। रोम रोम में राम रमे थे, रामा नाम तुम्हारा। सबका रिश्ता प्रभु से जुटाना, यही था काम तुम्हारा। मन से मन की तार मिली थी, बाबा बाबा कहती। दिलाराम बाबा का दादी, दिल था धाम तुम्हारा, दिल था धाम तुम्हारा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: Peace.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा बच्चों को योग में अभ्यास करते हुए देखते हैं। अमृत वेले भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन योग तपस्या तप के रूप में नहीं करते, प्यार से याद जरूर करते हैं, रोहण भी बहुत करते हैं, शक्ति भी लेने का अभ्यास करते हैं, लेकिन याद को इतना पावरफुल नहीं बनाया। जो जो संकल्प करो विदाई तो विदाई हो जाए। योग को योग अग्नि के रूप में कार्य में नहीं लगा, इसलिए योग को पावरफुल बनाओ। एकाग्रता की शक्ति विशेष संस्कार पसंद करने में आवश्यक है। जिस स्वरूप में एकाग्र होने जाओ, जितना समय एकाग्र होने जाओ, ऐसी एकाग्रता संकल्प किया और पसंद, इसको कहा जाता है योग अगर शान समापन। मारने में फिर भी लाश तो रहते है ना, बस होने के बाद नाम निशान कदम। तो इस वर्ष योग को पावरफुल स्टेज में लाओ। जिस स्वरूप में रहने जाओ, मास्टर सर्वशक्तिवान आर्डर करो, समाप्त करने की शक्ति आपके आर्डर से नहीं माने ये हो नहीं सकता।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: संस्कार बिना बिना होते होना है।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: दूसरे को नहीं देखना, बाप दादा को देखना, अपने बड़ी दादी को देखना, कितने न्यारी और प्यारी स्टेज है। Yeah.

0: सारे लाइफ में
1: सभी नहीं बन सकते।

0: 心我马克思，我擦死。
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: क्योंकि विश्व सेवक बनना है

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: रात्रि के समय जब सोने जाओ तो चेक करना जो सोने के पहले ही दूसरे दिन के उमंग उत्साह को इमर्ज करके फिर सोना और सुबह को उठकर देखना कि किया हुआ संकल्प अभी भी मर्ज है या थोड़ा भी मर्ज हो गया। अगर मर्ज हो गया हो फिर
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

gimana?

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सेब खुश
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

così.

समय तक खुशी

0: खुशी और शक्ति दोनों हो, सदा नहीं लेकिन कभी रहती कभी नहीं रहती। क्यों
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा का हर एक बच्चे से बहुत बहुत बहुत प्यार, ऐसे नहीं समझे कि हमारे से
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

不见。

Oh, shit.

संकल्प अपने दिल में करो, छोड़ना है अपने दिल में सोचो, लेकिन रोज अमृत वेले के बाद उसको चेक

sus cosas.

सर्वशक्तिवान है, साधारण नहीं।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अगर कोई गलती से आपके पास बुरा संकल्प आ जाए तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? आएगा तो सही, क्योंकि आपने बहुत समय बुराई को पाल के रखा है। वो देखो, पशु भी होते हैं ना, अगर पालते हैं ना तो उसको दूर भी फेंक के आते हैं, फिर भी आ जाते हैं, आते हैं ना। तो मानो आपने हाथ तो उठाया, बहुत अच्छा किया, लेकिन गलती से कोई कमजोरी आ जाए तो क्या करेंगे? कमजोरी लाने देंगे? देखो, इसकी भी विधि बताते। अगर आपके पास आपने वायदा तो किया ना, तो दे दिया ना बुराई, बुराई बाप को दे दी ना, अच्छा कोई को कोई चीज देती है। और फिर अगर गलती से आपके पास आ जाती है तो आप क्या करेंगे? रखेंगे अपने पास कि वापस करेंगे ना। तो अगर आपके पास थोड़ी क्रोध की रेखा, लोभ की, मोह की, अपमान की गलती से आ भी जावे, क्योंकि बहुत समय लगा है, तो वापस कर देना, बाबा मेरा बाबा अपनी चीज आप संभालो, मेरी नहीं। आप तो सागर है ना, सागर में समा जाकर आप नहीं, यूज नहीं करना, क्योंकि अमानत हो गई ना, तो अमानत में ख्यानत नहीं की जाती। बाप को दे दो, बाप आप जानो, ये जान मैं नहीं यूज करूंगा। अपने छोटे छोटे बच्चों को भी आप सिखाते हो मिट्टी नहीं खाना, सिखाते हो ना, और बच्चा फिर मिट्टी खा लेता है ना, उसको मिट्टी अच्छी लगती है। फिर आप क्या करते हो? बार बार उसके हाथ को चुराते हो या खाने देते हो, चुराते हो ना। तो ये अपने मन को चुराना, मन में ही तो आएगा ना। तो अपने मन का मालिक बन के इस चीज को छोड़ना, ठीक है? विधि करेंगे ना, सहज हो जाएंगे। हिम्मत नहीं छोड़ना, एक कदम आपके हिम्मत का और हजार कदम बाप के मदद का है। ये अनुभव करके देखना, हिम्मत नहीं हारना, दिल शिकस्त नहीं होना। सर्वशक्तिमान के बच्चे, दिल शिकस्त नहीं होना, हिम्मत नहीं हारना, दृढ़ संकल्प करना, सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।